0: है लाइका गोल्ड।
1: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
3: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार।
4: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: Classic Nagme. Aapke apne Leica Gold par.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

कोय। मन्ने शुद्ध होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती

तख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार। कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भखाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए अख

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई। जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहन जाई।

आद अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एक आवार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए।

0: to London. This is Cardinal on Breakfast. Leica Gold, traffic and travel.
1: Starting with the M4 elevated section out of town, we've got a traffic problem. One lane blocked from Brentford to Heston services. This is just towards the end of the elevated section, so very busy as a result. Phillip Lane, there is a road blocked from Lawrence Road to Dongola Road due to fire services activity. Traffic isn't too bad, just do keep that in mind. And High Street North, one-way street, there's a police incident, so bus lane is closed as well from Thorpe Road to Kempton Road with traffic slow. Now, an earlier lineside fire at Clapham Junction is affecting Gatwick Express between Victoria and Brighton, and Southern services, where they're only operating every half hour to and from East Croydon. And that's the latest traffic and travel.
2: Technology is always evolving, isn't it, Sarah?
3: That's right, Albert.
2: First vinyl, then CDs, and now streaming?
3: It's streaming, Albert.
2: Yes, and smart meters are evolving too. Energy suppliers are switching up older smart meter hardware for new kit, so you keep all your benefits.
3: Like access to flexible schemes and tariffs?
2: Yes, that could offer rewards. So when your energy supplier contacts you, switch up, stay smart.
4: Eligibility varies. Schemes and tariffs available to selected customers.
5: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.
0: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar. London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Miya Chote Miya this December.
6: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
0: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
0: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे
10: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
9: ये तो बताओ कोई पता चला
10: गुरु गुरु
11: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
9: साधु तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
11: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर
12: टू बुक कॉल 0208-514-54 Book online at Eventbrite.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
15: बिग बॉस में इस बार मिले बरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान तब हस्तों में जान
0: Big Boss Season 20, every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss House, exclusively on Jio Hotstar.
16: Dosti, masti ane emotions ni ek anokhi story. सांभर एक काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए
17: नाकता चाहिए એટલે
18: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
19: गांडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे ने यार
18: तारी मारी दो से पिको स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज नाउ यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया
20: sonatours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
21: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, Atal Protected.
3: London, taiyar ho jao. Aa raha hai Sega Navratri 2026.
4: 9 se 10 October, pre-Navratri.
3: Aur 11 se 19 October, Navratri ka jashn.
4: Kajal Pandya aur Avinash Barot ke saath live music par jhoomo, garba khelo.
3: 17 October, Kids Garba. Aur 24 October, Sharad Poonam Garba bhi.
4: Milte hai Asian Community Center, White Hart Road, London, SE18 1DG.
3: Tickets book karo, segalondon.co.uk.
4: Sega Navratri, bhakti, masti aur garba.
5: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी.
6: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल.
5: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हैरो लेजर सेंटर में.
6: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल.
5: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947.
6: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116.
5: दिवाली का जश्न अपनों के संग.
7: दोस्ती, मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी.
8: सांभळ, एक काम कर, मेडिकल दे ले अने नाखता जाइए. नाखता जाइए એટલે
7: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी, प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख, डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक.
9: तू गांडो छे, आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे ने यार.
10: तारी मारी दोस्ती.
7: स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी. मित्रता इन सिनेमाज नाउ. यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.
11: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203.

0: 5757 to arrange your meeting.
1: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 अक्टूबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ बधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777 287509

0: Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 our line.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
6: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.

0: Japan tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
3: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
2: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
3: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
2: Cashback Remortgages. The broker that gives you back.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन.
5: फ्रॉम साउथ ऑफ ब्रॉडवे टू द London Tube, UK. The big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
8: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
9: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baate, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट ट्रेवल world.com
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
5: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: Is Diwali shopping bhi, masti bhi, aur filmi sitaron se mulaqat bhi.
4: Pankaj Sodha presents Diwali Shopping Festival.
3: Superhit Gujarati film Lalo ke artist Shrohat Goswami aur Reeva Raj se miliye 31 October aur 1 November ko Hero Laser Center mein.
4: Variety of stalls, shopping or stage entertainment. Puri family ke liye full on dhamal.
3: Stall book karne ke liye Deepa ko call kare 0794756147.
4: Tickets ke liye call kare Videorama 0208907.
3: Diwali ka jashn apno ke sang.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: 0730098823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730098823.
7: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी.
8: सामने एक काम कर, मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए. नाकता चाहिए એટલે
7: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी. प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख. डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक.
9: तू गांडो छे, आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछड़ वालों ब्रेक मारे ने यार. तारी मारी
7: दोस्ती. स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी. मित्रता इन सिनेमाज नाउ. यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.

0: Set Co Food Containers Total Satisfaction.
1: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October. And marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
2: तेरा क्या होगा रे कालिया?
3: सरदार, मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
2: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
4: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
5: पूनम स्वीट सेंटर, 86 वेस्टर्न रोड, साउथ हॉल। कॉल 0208574-4934। डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर।
6: आर यू सिटिंग ऑन अ मॉर्गेज एंड गेटिंग नथिंग बैक? What if your remortgage paid you?
7: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
8: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
7: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
8: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
9: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
10: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में
9: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
10: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में यूके में पहली बार
9: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन
10: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
9: शाम 7 बजे डोर्स ओपन
10: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 0208426-0678
11: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575 केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD प्लीज कॉल ऑन 07466997575
12: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोड्रोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
13: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
14: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: सोमवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 28 तारीख वक्त हमारी आपकी मुलाकात का। कई लोगों का जन्मदिन, कईयों के भाई शादी की वर्षगांठ और कईयों की पुण्यतिथि। जिक्र करेंगे महापुरुषों का, उन लोगों का जो जाने माने हैं, जो आपने पहचाने हैं और जिनका आज के दिन के साथ कोई ताल्लुक है। इसके अलावा भाई डायरी खोलें, शायरी से शुरू करें, गीत संगीत सूचना समाचार चिंतन विचार, 3 घंटे का ये कार्यक्रम मेरे साथ आप सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मनोरंजन है नाम और दिल बहलाना है आपका काम। रवि शर्मा विद यू। परदेश में रहकर हमें ये एहसास हुआ है, हर दौर में इंसान को वनवास हुआ है। यूं कट गए एक पल में कई जन्मों के रिश्ते, नाखून से अलग जैसे मेरा मांस हुआ है। नमरूद हलाकू हो, चंगेज या हिटलर, हर दौर के रावण का सदा नाश हुआ है। उस डाल पे क्या गुजरी जो फूल से बिछड़ी, दिल मेरा उसी दर्द से हसास हुआ है। ए मौत जरा दम ले, क्या जल्दी है तुझको, ए मौत जरा दम ले, क्या जल्दी है तुझको, मुश्किल से अभी जीने का अभ्यास हुआ है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Non-stop classics. Leica Gold.

आज लता जी का जन्मदिन है और भाई लता जी का जन्मदिन तो हर उस पल होता है जब उनका स्वर उभरता है और हमारे कानों में रस भरता है। गुलों की रुत सुहानी आ गई है, चमन में शादमानी आ गई है, बदन में नाटवानी आ गई है, सुरों की महारानी आ गई है।

0: ऐसे भी कोई गीत को काटता है भाई। देखिए थोड़ा सा संगीत चल रहा था, हमने सोचा कि कुछ थोड़ी देर और बजेगा, लेकिन बड़ा क्या कहते हैं, छोड़िए, ये कंप्यूटर का कमाल है, शर्मा जी की दखलंदाजी नहीं है। लेकिन साहब कुछ गीत जो है वो ऐसे समाप्त होते हैं कि उम्मीद नहीं की जाती। वह अगर मुझे पता होता कि यहाँ इसने ख़त्म होना है तो हमारे पास एक तरीका है धीरे धीरे फेड आउट करने का, और लगे कि भाई हाँ कुछ गीतों को हम समय से पहले भी रोकना पड़ता है ना, तो इसी तरह से रोकते हैं कि वो लगे कि भाई हमने नहीं रोका है, बस वो रुक गया है, कंप्यूटर से रुक गया। तरीका बता रहा हूँ, अपनी गलती को कंप्यूटर पर थोपने का ये एक तरीका है, सीख लीजिए। लेकिन ये कंप्यूटर की गलती थी, डेफिनेटली कंप्यूटर की गलती, या कंप्यूटर में इस गीत को भरने वाले की कि ऐसे भाई काटा। खैर साहब गीत दोनों ही अच्छे थे, लता जी की आवाज़ में दो गीत हमने आपको परोसे आज उस शारद पुत्री यानी सरस्वती माँ की लाडली बेटी, क्या कहें, कंठ कोकिला, हाँ, और साहब स्वरों की महारानी लता जी का जन्मदिन है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा गीत बजेंगे उनकी आवाज़ में। लेकिन शुरू शुरू में आपको पता है कि लता जी की आवाज़ को ये कह के रिजेक्ट किया गया था कि बहुत पतली आवाज़ है, बहुत तो पतली आवाज़ है तो भाई अच्छी है कि बुरी है, खोटी है कि खरी है, अब सुन के देखिए। थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था लता जी को शुरू में, दरअसल बहुत छोटी उम्र की थी जब उनके पिता का देहांत हो गया तो जिम्मेदारी भी आन पड़ी थी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि भाई बहुत छोटी उम्र से ही उनके टैलेंट को उनके पिताश्री ने पहचाना था और ये माना था कि एक दिन ये बेटी बहुत बड़ी गायिका बनेगी। खैर साहब आगे चल करके उन्हीं की बातें होंगी, इसके अलावा कुछ और बातें, जिक्र तो आज भगत सिंह का भी करेंगे भाई, शहीद आजम भगत सिंह, और कुछ ऐसी बातें जो आज के दिन के साथ संबंध जोड़ती हैं। राइट, 10:20 हो गए हैं ब्रिटिश घड़ियों में, 10:30 हम आपको खबरें भी सुनवाएंगे, बट लेट्स फाइंड आउट हाउ द पाउंड इज परफॉर्मिंग अगेंस्ट इंडियन रुपी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: देखिए साहब, SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आज एक पाउंड के बदले दे रहे हैं 126.85 रुपीज, 126 रुपए 85 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Laika Gold.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
4: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 8574840। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.

0: Tesco food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Sadco food containers.
0: The perfect food storage solution, Sadco food containers.
2: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
3: सामने काम कर मेडिकल देले अने नाकता चाहिए
4: એટલે
2: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
5: गांडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे ने यार
6: तारी मारी दोस्ती
2: स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज नाउ यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.
7: We're finally going home for the wedding.
8: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
8: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
8: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
9: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
10: Weddings, celebrations, corporate events, Ragas and sab kuch efficiently handle.

0: गीत सुनवाया आपको, हम इंतजार करेंगे। हमारे श्रोता पूछ रहे हैं किसका इंतजार हो रहा है। भाई मैं तो कहूँगा कि किसका इंतजार हो सकता है, डीजल का हो रहा है, पेट्रोल का इंतजार हो रहा है। डीजल के बारे में सुनिए खबर के, ब्रिटेन में आज जिस भाव पर डीजल मिल रहा है, कहते हैं इतना महंगा तो इतिहास में कभी नहीं रहा। हाईएस्ट प्राइसेस वी आर पेइंग फॉर डीजल, प्राइस ऑफ डीजल हिट ऑल टाइम हाई, ये भाई खबर है। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं, आइए 10:30 बज चुके हैं, खबरों का रुख करते हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। ब्रिटेन में आरएएफ फेयरफील्ड एयरबेस के पास सस्पेक्ट एक्टिविटीज की सूचना के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध गतिविधियां, सस्पिशियस एक्टिविटीज। पुलिस के मुताबिक इन लोगों पर टेररिज्म की वारदात की तैयारी और विस्फोटक संबंधी यानी धमाकेदार जो है ऐसी सामग्री रखने का अपराधों का संदेह है, शक है। दरअसल पुलिस को संडे देर रात एयरबेस की ओर जाते हुए 3 सस्पेक्ट गाड़ियों की सूचना मिली थी और इसके बाद सिक्योरिटी कारणों से एयरबेस के पास वेलफोर्ड गांव के दर्जनों घरों को खाली कराया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों को रात भर अपने घरों में लौटने की इजाजत नहीं दी गई, हालांकि स्थिति अब कंट्रोल में बताई जा रही है। ब्रिटिश फौज की एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम एयरबेस के पास मौजूद गाड़ियों की जांच कर रही है। मामले की जांच काउंटर टेररिज्म पुलिस की लीडरशिप में चल रही है, देखरेख में चल रही है। इलाके में करीब 400 मीटर का एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है और इमरजेंसी सर्विसेज की बड़ी तैनाती के तहत हैजर्ड्स एरिया रिस्पॉन्स टीम को भी मौके पर भेजा गया है। ये भी आपको स्पष्ट कर दें कि आरएएफ फेयरफील्ड का जो अमेरिकी फौज के साथ लंबे समय से रिश्ता रहा है और यहाँ अमेरिकी एयरफोर्स की एक्टिविटीज होती रही हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। भारत से जो खबरें आ रही हैं भाई, संडे देर रात इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच एक बैठक हुई है। उसमें एक सहमति बनी है कि 28 यानी आज से 30 सितंबर तक होने वाली 3 दिन की जो देशव्यापी बैंक हड़ताल है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। यूएफबीयू ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि बैंक यूनियनों की मांग पर विचार करने के लिए आईबीए एक हाई लेवल कमेटी बनाने पर राजी हो गई है, जिसके बाद यूनियंस ने हड़ताल को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। भारत से आने वाली अन्य खबरों में सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली एनसीआर हाल में सामने आए रेप के मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। इनमें से एक पार्क में गैंग रेप और दिल्ली में चलती स्लीपर बस के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन प्रताड़ना का मामला शामिल है। कांग्रेस जनता पार्टी ने नए आंदोलन का ऐलान किया है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आज इस बात की जानकारी साझा की है। अभिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि 2 अक्टूबर को सीजेपी मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। अभिजीत ने पोस्ट में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को दोहराया है और इस्तीफा न देने की स्थिति में सीजेपी आंदोलन शुरू करेगी। बहुजन समाज पार्टी की चीफ और उत्तर प्रदेश की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मायावती ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव और मुखर हो रही हैं। मायावती ने कहा कि बीएसपी की ये मांग है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से चुनाव तुरंत बंद किए जाने चाहिए। इंटरनेशनल खबरों में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में आज करीब 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसके साथ ही ब्रेंट की कीमत $106 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज किया जिसमें 7 दिनों के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की बात कही गई थी। ट्रंप के इस फैसले की वजह से ही तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। हालांकि इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के साथ ये जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। भारत से आने वाली एक खबर में उज्जैन में शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। उज्जैन भाई मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान आज छतरी चौक इलाके में टेंशन बढ़ गई है। दरअसल सिंहस्थ कुंभ 2028 के मद्देनजर चल रहे सड़क चौड़ा करने के प्रोजेक्ट के तहत ये कार्रवाई हो रही है। रविवार की रात से ही मस्जिद के एक हिस्से को हटाए जाने के विरोध में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें भाई, अगर कोई सड़क चौड़ी करनी हो या पब्लिक की सुविधा के लिए कोई काम किया जाता है तो उस काम में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है कि मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद अपने पुश्तैनी घर को तोड़ने का काम खुद किया। खुद वो औजार लेकर के उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद उनका अपना घर जो उनका पुश्तैनी घर था सड़क चोरी करने के लिए उसे तोड़ा गया, हटाया गया। यमन के हूती ग्रुप से जुड़े सोर्सेज ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि संडे को ताइज इलाके में हुए हवाई हमलों में उनके लगभग 30 लड़ाके और 8 आम लोग मारे गए हैं। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड यमनी सरकार ने दावा किया है कि उसने हूती फौजी शिविर यानी कैंप्स और गाड़ियों को निशाना बनाया है। हूती हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमला ताइज प्रांत के माविया चौराहे पर स्थित बाजार की दुकानों पर हुआ है। चिराग पासवान, ये भाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, तो इन चिराग पासवान साहब ने अपनी ही सरकार के खिलाफ तीखा रुख अपनाया है। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि बिहार में आज की तारीख में कोई सुरक्षित नहीं है, हमारी सरकार की चिंता है, लेकिन एक सहयोगी और सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं इस सवाल से भाग नहीं सकता। मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं ऐसी सरकार के साथ हूँ जहाँ पर ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। और पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है भाई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में वहाँ कुछ दंगे हुए हैं, कुछ मामला चल रहा है, उसके बारे में जानकारी आई है। पंजाब के जालंधर के पास स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हालात अब सामान्य होने की बात पुलिस कह रही है। इस मामले में 5 लड़कों को डिटेन किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। 27वीं बटालियन की कमांडेंट गुरमीत कौर ने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि डिटेन किए गए लड़कों के पास से एक दातड़ और वॉकी टॉकी सेट बरामद हुआ है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और भाई क्रिकेट का जिक्र करें तो कल का मैच यादगार रहेगा, आगे चलकर करेंगे उसका जिक्र, जिसमें कोहली रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं और उनके प्रशंसकों की संख्या सीमा के दूसरी तरफ भी बढ़ती जा रही है। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: अनुराधा पोडवाल और पंकज उधास की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना, आज फिर तुम पे प्यार है, यानी कल भी आया था, परसों भी आया था, आता जाता रहता है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और साउथ ऑल ट्रेवल वालों की भाई वही बात फिर दिलाते हैं याद कि साउथ ऑल ट्रेवल इज नोन फॉर इट्स कंपेटिटिव हॉलीडे डील्स। तो दुबई, दुबई की यात्रा करना चाहते हैं और आरामदायक और सुखद माहौल में, तो भाई कॉन्टैक्ट साउथ ऑल ट्रेवल टुडे ऑन 0208-574-8410। साउथ ऑल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Ye hai Leica Gold.
4: Leica Gold.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: London, are you ready? Raghavan presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: London, get ready for an unforgettable night.
8: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
7: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
8: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
7: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
8: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
7: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
9: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
0: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
9: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
0: Friends, family ya special night out. यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड। कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।

0: दर्शन सिंह नागी भाई उस फरमाइश करते हैं इस गीत के। और हमारे कई श्रोता कह रहे हैं कि आज साईं बाबा जी का जन्मदिन पड़ता है। कहते हैं 28 सितंबर का दिन था 1835 में, जब पथरी में उनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। और भाई उनके फॉलोवर्स में हिंदू मुस्लिम और कई संप्रदाय के लोग होते हैं। हमारे भाई गायक कलाकार ना काशिफ, राजा काशिफ, वो जब स्कूल में पढ़ते थे, छोटे से बच्चे थे, मैं उन्हें एक मंदिर में लेके गया, उन्होंने पहली बार ये भजन गाया। और साहब ये गाने के बाद तो कितने ही जो श्रद्धालु जो है उनके फॉलोवर हो गए, उनके प्रशंसक हो गए। और देखो एक इस गीत ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। राजा काशिफ, ये आपके नाम है।
1: ये है Laika Gold। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
2: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
4: Lights on, shutters up, staff ready.
3: But today's customers don't start on the high street.
4: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
3: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
4: They walk into your competitors.
3: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी, रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी। कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा। वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइस्लिप, HA40JS। रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों मां जरूर जोड़ाओ। वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-22-87509।
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.

वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा और बहनों भाइयों, मैं 10 से 1 बजे के बीच आपकी सेवा में हाजिर रहता हूं। लेकिन ये जो 11 बजे का समय है, ये चिंतन के लिए निश्चित है। मनोरंजन प्रोग्राम का एक ऐसा पड़ाव जिसके बारे में भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से सुनता हूँ, वो कहते हैं जी हम पूरा प्रोग्राम ना भी सुन पाए तो चिंतन तो हम अवश्य सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। कल भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई तो चिंतन वाले रवि शर्मा हैं आप? मैंने कहा जी बिल्कुल वही हूँ। और अच्छा लगता है ये बातें मैं बता रहा हूँ वेम्बली अरीना की, वो अरीना भाई वेम्बली में इतने लोगों से भेंट हुई, क्या ज़बरदस्त कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया कल सनातन वालों की ओर से, एंड दैट वाज दिवाली स्टोरी बड़े प्रभावित तरीके से पेश किया गया और हमें विश्वास है कि और आगे और भी निखरेगा। लेकिन भाई जहां वहां लोगों से जितना प्यारा प्रोग्राम था उतने ही प्यारे दर्शक भी थे और ऐसा महसूस होता था कि भाई हम अपने बच्चों को लेके जाते तो और ज्यादा अच्छा होता। जितने बच्चे गए अंग्रेजी में प्रस्तुति थी और पूरी रामायण को ब्रीफ में थोड़े थोड़े अंश लेकर के दिखाया गया। आयोजकों को हमारी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपका लाइका रेडियो नेटवर्क भी जो है पार्ट था उसमें, स्पॉन्सर्स में। तो साहब ये चिंतन जो है हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद हम पेश करते हैं। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें जसकरण सिंह ने भिजवाया है और हमारे हिंदी सोसाइटी के चेयरमैन जो है अशोक कपूर साहब ने भिजवाया है और वो कहते हैं कि लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है, सब जिक्र कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, वो दुनिया में नहीं है लेकिन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। जब भी आप उनका गीत बजाते हैं लता जी जीवंत हो उठती हैं। लेकिन जसकरण सिंह का कहना है कि आप असली हीरोज को भी याद करते हैं, असली हीरोज, हाँ फिल्मी हीरोज के अलावा वो लोग जो सचमुच में हीरो थे। आप लता मंगेशकर जी का गीत बजाते हैं, भाई हमें ये बात याद दिलाई है हमारे पम्मी सिंह ने भी, उन्होंने पंजाबी में लिख के भी भेजा कुछ। हमारे देशराज बैसन साहब ने भी इशारा करते हैं, ये कहते हैं कि जो असली हीरो हैं हमारे समाज के, हमारी कौम के, हमारे देश के, उन्हें भी याद कीजिए। क्योंकि लता मंगेशकर जी बहुत बड़ी हस्ती रही हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण और भाई कहां तक आखिरी जो सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, वो भी उन्हें मिला। लेकिन लता जी ने इशारा किया कि उन्हें भी याद किया जाना चाहिए। जो सचमुच के हीरो हैं कौन है वो,

लता जी खुद कह रही हैं कि मेरे जन्मदिन पर मुझे याद करने के साथ साथ उनको भी याद करो जो लौट के घर नहीं आए, कुछ याद उन्हें भी कर लो। ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा पर मत भूलो, सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर नहीं आए। ये गीत भाई लाल किले की प्राचीर से लता मंगेशकर ने भारत चीन युद्ध के बाद जब 26 जनवरी को गाया तो प्रधानमंत्री नेहरू वहां उपस्थित थे और उनकी आंखों में आंसू थे, बहुत सारे लोगों ने नोट किया। गीत खत्म हुआ, लता जी बैक स्टेज चली गई और भाई लोग भी जब कार्यक्रम में बहुत भावुक होकर के, वो भारत चीन युद्ध समाप्त हुआ था, बहुत सारे जवान शहीद हुए थे,

0: थोड़ी देर बाद भाई वो फिल्मी दुनिया के प्रोड्यूसर शायद महबूब खान साहब उनको लता जी के पास गए और कहने लगी आपको प्रधानमंत्री जी याद कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं। लता जी संकोच करती हुई कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं स्टेज पर हो गया उनसे या कोई जिसके कारण वो नाराज हुए हों, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। लता जी गई, नेहरू जी की आंखें अभी भीगी हुई थी और कहने लगे बिटिया तुमने आज रुला दिया मुझे।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी।
0: बहुत बड़ा योगदान था भाई लता जी का भी, प्रदीप जो गीतकार थे उनका भी, फिल्मी हस्तियों का, बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हमें याद है कि सीमा पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं, और आजकल तो खुद प्रधानमंत्री जो है जवानों के साथ दिवाली और त्योहार दूसरे मनाते हैं। लेकिन साहब असली हीरोज को कैसे याद करें, याद दिला रहे हैं कि आज आप भगत सिंह को याद कीजिए। पप्पी आपने जो है पंजाबी में लिख के भेजा है, शहीद भगत सिंह जी नू कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पंजाबी भी पढ़नी आती है, तो बहुत अच्छा लिखा है, शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी दे जन्म दिहाड़े मौके ते कोटि कोटि असी प्रणाम करते हैं, 28 सितंबर 2026 दिन सोमवार, ये आपने लिखा है, पोस्टर बना के भेजा है, इनकलाब जिंदाबाद। तो भाई लता जी को याद करने के साथ साथ आइए, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, उन्हें भी याद कर लें, क्योंकि शहीद भगत सिंह जरा सोचिए इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा इरादा। उन्होंने असेंबली में धमाका किया लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई व्यक्ति जख्मी भी नहीं हुआ, डरे सब, आवाज हुई और वो गिरफ्तार हो गए। लोग पूछते उन्होंने भागने की कोशिश क्यों नहीं की, वो भागने के लिए नहीं, वो गिरफ्तार होने के लिए ही वहां आए थे। वो गिरफ्तार होकर के खबरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अपने देश के जवानों को जगा रहे थे। और उसके बाद भाई जब उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई तो पंडित चंद्रशेखर आजाद ने उनको संदेश भेजा, भगत तैयार रहना, आज की रात हम जेल तोड़कर तुम्हें निकाल ले जाएंगे। भगत ने तुरंत अर्जेंट जवाब भेजा, ऐसा मत करना पंडित जी, मैं तो आजादी था, मतलब बाहर ही था, लेकिन मैं असली आजादी के लिए लड़ रहा हूं और वो मुझे बाहर आकर नहीं जेल में रहकर फांसी पर चढ़कर ही मिलेगी। फांसी पर चढ़कर के शहीद होकर के मैं अपने देश के नौजवानों को जिंदा करना चाहता हूं, उनके जज्बे को जगाना चाहता हूं, मैं शहीद होना ही चाहता हूं। और बहनों भाइयों हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा भगत सिंह। तो आइए आज और लोगों के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए याद करें उस शहीद को जो हमेशा जिंदा रहेगा हमारे दिलों में, हमारे जीवन में, शहीद आजम भगत सिंह।

इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।

1907 में जन्म हुआ और 1931 में शहादत कबूल कर ली, स्वीकार की, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। 23 साल की उम्र में 23 ही बाज लाहौर की सेंट्रल जेल में।

क्या लोग थे वो दीवाने। क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनको, उनकी जरा याद करो कुर्बानी।

0: सरदार भगत सिंह की जयंती पर मैं उन्हें करोड़ों प्रणाम करते हुए आज के चिंतन में ये श्रद्धांजलि स्वरूप प्रेजेंटेशन, जिसके लिए आलेख हमें हिंदी सोसाइटी के श्री अशोक कपूर जी ने और साउथ ऑल एशियन सोसाइटी से जसकरण सिंह जी ने भिजवाया। बहुत बहुत धन्यवाद जसकरण सिंह जी एंड अशोक जी। और बहनों भाइयों, जो गीत आपको सुनवाए थोड़ा सा लता जी की आवाज में, मेरे वतन के लोगों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को भावुक कर देने वाला गीत, रुलाने वाला गीत। और भाई दूसरा गीत गुरदास मान और साथियों की आवाजों में आपने सुना। चिंतन समेटते हुए याद दिला दें आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। हमें बहुत सारे संदेश भाई मिले हैं, उनमें हंसा बोरा स्लो वाली रानी जगदीश जी भूषी में, कीर्ति बहुत बहुत धन्यवाद, मनु, विजय, हरविंदर, अविनाश पटेल, आपको चिंतन बहुत पसंद आया पटेल साहब, थैंक यू, अनिल सोनी वियाना वाले, पम्मी हमारे स्लो वाले, और नरेंद्र पांचाल जी, थैंक यू। और भारत में हमें नीलम सुन रही हैं। नीलम, आपकी पसंद का गाना अभी लगाएंगे, थोड़ी देर में सुनते रहिएगा। भारत में सुन रही है, दिल्ली में, कुछ और लोगों को भी सुनवाइए और लोगों को भी हमारे साथ जोड़िएगा। और राधा गर्ग रेडिंग में है, राधा जी आपका मैसेज मिला, थैंक यू। बसंत साहब हमारे साथ जुड़े रहते हैं, भारत गंगाराम हेतल सोलंकी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that today the rate is good, but if you want to send money to India to your family members, friends, today's rate is 126.85 rupees for £1. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. You can make the transfer. And remember, terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai.
4: Like a gold.
5: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
2: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
1: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
2: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
1: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
2: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
1: टिकट्स बुक करो सेगा लंदन.co.uk।
2: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें आपने सुनी। और है ना भाइयों, आज क्योंकि लता जी का जन्मदिन है, ये गीत शायद कंप्यूटर इसीलिए लगा रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन कंप्यूटर ये नहीं बता रहा कि भाई कोई खास प्रसंग लता जी के जीवन से जुड़ा हुआ। एक तो भाई ये बताऊं आपको कि बहुत छोटी उम्र में उनके पिताजी का निधन हो गया था, लेकिन छोटी उम्र में ही उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, पर छोटी उम्र में ही उनके टैलेंट का पता उनके पिताश्री को लग गया था। संगीत के आचार्य थे, टीचर थे, उनके घर में एक स्टूडेंट आया करता था और वो उसे अभ्यास करने के लिए बिठा करके थोड़ी देर के लिए बाहर गए। वापस लौटे तो देखा कि वो छोटी बच्ची लता 6 साल की उस स्टूडेंट को कह रही है कि आप ठीक नहीं गा रहे हैं, आप ऐसे गाओ, और वो गा के बता रही थी उसे। और पिताश्री ने सुना तो कह अब अपनी पत्नी को कहने लगे कि हम तो बाहर ढूंढ रहे थे टैलेंट, हमारे घर में इतनी सदी हुई आवाज़ है, हमें इसे ही निखारना चाहिए, इतनी सुरीली है बेटिया हमारी, इतनी जानकारी है इसकी संगीत के बारे में। पता लग गया था भाई, तभी लता जी को भी रियाज कराना बस सिखाना शुरू किया। लेकिन सुन सुन के जब वो दूसरों को स्टूडेंट्स को सिखाते थे, लता जी इतनी पारंगत हो गई थी संगीत में। और भी एक घटना है, आगे बताएंगे लता जी के बारे में, काफ़ी बातें जो हैं मशहूर हैं। वैसे तो जानकारी सारी बाली भाई जुटा के लाएंगे, फिल्मी सितारों का ठेका उनके पास है। और ये सूचना भी भाई आपके साथ साझा करनी है, हमने पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं ये मर्सिडीज़ के बारे में। मर्सिडीज़ वैन वाले कह रहे हैं कि भाई आपका कारोबार अगर इस पर डिपेंड करता है तो बस यूँ सोच लीजिए कि आपको हमारी हमें आपकी और आपको हमारी ज़रूरत है। मर्सिडीज़ वैन के बारे में वो कहते हैं कि कहते हैं कि ये संदेश उन लोगों के लिए जो मर्सिडीज़ बेंज वैन्स की चलाते हैं, और उनके लिए हम बताते हैं कि आपकी वैन सिर्फ आप आने जाने का साधन नहीं है, सिर्फ गाड़ी नहीं है, आपकी रोजी रोटी और इज्जत उसी पर डिपेंड करते हैं। इस सोच के साथ हमने मर्सिडीज़ बेंज वैन्स या अप टाइम प्रॉमिसेस लेकर के आए हैं आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए, और अनेक फ़ायदों का एक पैकेज हमने बनाया है, जैसे कि 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, ज़्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग, और भी बहुत कुछ। यानी आपकी वैन के ख़राब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके चलाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो सब पाइए एक ही जगह, मर्सिडीज़ बेंज वैन्स। भाई इस टाइटल के तहत सर्च करें और अप टाइम प्रोमिसज़ के बारे में जानकारी लें।
1: This is Like a Gold. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: थोड़ा सा सैड सॉन्ग आ गया है भाई रफ़ी साहब की आवाज़ में, लेकिन रवि का संगीत होता है तो दर्द भी बहुत मीठा होता है। मैं एक फसाना हूँ बेकसी का, ये हाल है मेरी जिंदगी का। किसी ने जिक्र वफा किया, तुम्हें भुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं, क्यों? क्योंकि किसी ने जिक्र वफा किया तो जुबां पे तेरा ही नाम आया।

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: दो बदन फिल्म का गीत और सारे ही गीत हिट थे भाई इस फिल्म के, और रफ़ी साहब की आवाज़ में, आशा जी की आवाज़ों में, मतलब लता जी की आवाज़ में कई आवाज़ें शामिल की रवि साहब ने, लेकिन धुनें ऐसी बनाई कि यादगार बन गई। और गीत लिखे शकील बदायूनी ने, शकील साहब के साथ रवि जी ने बहुत काम किया, लेकिन राजेंद्र कृष्ण भी उनके फेवरेट गीतकार थे। खैर साहब, एक सूचना और हमारे पास है। ये गीत संगीत सुनवाते हुए बता दें आपको, ये सूचना है कि कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1%, होस्टेड बाय अनिल कपूर, एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉट स्टार। ये कार्यक्रम उन पर आता है। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉट स्टार ऐप नाउ। जियो हॉट स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: लाइका एक्स्ट्रा पर क्या है भाई, बता दें आपको, हमारा नया एपिसोड जो है ना, उसका ये एपिसोड नंबर 35 है, राज बदन 5 ईयर्स शोकेस। 5 साल हो गए उन्हें एज ए CEO ऑफ लाइका रेडियो नेटवर्क, और उनका जो अनुभव है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनका जो संघर्ष है, वो सारा भाई डिस्कस किया गया है। रूबी रजा और डोनी ब्रेस्को ने उनके साथ बातचीत की है, बहुत दिलचस्प जानकारी है, आप ज़रूर देखिएगा 5 ईयर्स शोकेस बाय राज बदन, या उनका राज बदन का, तो लाइका एक्स्ट्रा पर उपलब्ध है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: लाइका गो
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
5: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
4: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में।
5: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
4: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 0794756197।
5: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208-907-0116।
4: दिवाली का जश्न अपनों के संग।

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
3: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
4: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Forgotten memories refreshed. Like a Gold.
6: Ek dilchasp waqia yaad aata hai bhai. Amritsar mein Lata ji ka program tha. और अगले दिन उन्हें वापस लौटना था, तो प्रोग्राम के बाद लता जी ने कहा कि यहाँ से लाहौर कितनी दूर है। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि नूर जहाँ जी से मिलने को जी चाहता है। तो ऑर्गेनाइजर्स हैरान थे, भाई इतनी जल्दी में तो नहीं अरेंज हो सकता, भाई दोनों देशों के बीच सीमा है, फिर वीज़े की व्यवस्था है, काफ़ी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखते हैं। नूरजहाँ जी को भी मैसेज भिजवाया गया, वो तो फटाफट तैयार हो गई और उनकी पसंद की मिठाई लता जी की उन्होंने तैयार की। और अगले दिन ये फैसला किया गया कि भाई वो बॉर्डर के उधर होंगी या हम बॉर्डर के इधर होंगे, और अगर सैनिकों ने वो जो वहाँ पर पहरे पर होते हैं अगर वो परमिशन दे देंगे तो बीच में दोनों को मिलवा देंगे। अगर वो शायद हो सकता है दो बड़े इतने बड़े कलाकारों को मिलने दें। और बहनों भाइयों, ये घटना याद रहेगी दुनिया वालों को। भले ही भाई राजनेता या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका तो धंधा चलता है लड़ाई झगड़ों पर, उनकी तो वेजीज तभी बनती, लेकिन कलाकारों ने हमेशा दिलों को जोड़ा है, संस्कृतियों को जोड़ा है, गीतों को जोड़ा है। और वो मीटिंग, वो मिलन, और नूरजहाँ आई और वो लता जी की पसंद की वो जो भी उनका फूड था, मिठाई वो बना के लाई, और दो कलाकारों का मिलन, वो यादगार मिलन था। ये घटना ढूंढना कहीं गूगल पे आप।

दिल में रहने वाले दिल की बात सुनते हैं और दिल्ली में दिल की आवाज सुनते हैं, अपनी पसंद का गीत सुनते हैं। दिल्ली वालों, ये गीत आपके नाम। भाई, भारत की राजधानी से फरमाइश आए और वो पूरी ना की जाए, कैसे हो सकता है। थैंक यू मिसेस बख्शी, आप और आपकी सहेलियों, आपके रिश्तेदारों के नाम ये गीत नई दिल्ली में। और भाई, यहाँ भी लोगों को पसंद आया होगा। कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दोपहर बाद एक बजे तक, यहाँ के समय के अनुसार, आपके यहाँ तो 5:30 बजे तक हम आपकी सेवा में हैं दिल्ली वालों। तो साहब, ये तीसरा दौर है। माई नेम इज़ रवि शर्मा। यहाँ के समय के अनुसार दोपहर बाद 1 बजे तक मैं ये मनोरंजन कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और भाई, ये गीत लता जी की आवाज़ में था और लता जी की आवाज़ ये साबित कर रही है कि स्वर ईश्वर है, स्वर कभी नहीं मरता। लता जी दुनिया में नहीं है पर लता जी का स्वर है। साउंड इज इमॉर्टल। हम जब चाहे उनसे बात कर लें, लता जी से पूछ लें, कुछ कह दें। लता मंगेशकर, कंठ कोकिला, शारद पुत्री, भाई जवाब नहीं है उस आवाज़ का, उस अंदाज का। आपको मैं बता चुका हूँ कि लता मंगेशकर को मैंने इंटरव्यू किया था, ये मेरा सौभाग्य। और भाई, मैं कभी चीज़ें संभाल कर नहीं रखता, बहुत मुश्किल से उनकी कुछ बातचीत जो है मैंने ढूंढ कर निकाली है, निकलवाई है। तो साहब, लता मंगेशकर को अगर वो गाती ही सुरीला नहीं है, वो बोलती भी सुरीला है, इतना मीठा बोलती हैं कि साहब ऐसा लगता है कि उनकी बातचीत भी किसी गीत से कम नहीं है। कहाँ है लता जी, कहाँ हैं आप? आपकी आवाज़ सुनने को जी चाहता है। सुनवाता हूँ, सुनवाता, अभी यहीं कहीं पर मैंने लता मंगेशकर जी को ढूंढ निकाला था। कहाँ है?

0: आप कहेंगे ये तो गीत है शर्मा जी, जो आपने इंटरव्यू किया था वो कहाँ है, वो यहाँ है।
1: लता जी, संगीत के क्षेत्र में आने वाली नई आवाजों के लिए आपका कोई संदेश?
2: मैं अभी कह चुकी हूँ कि मेरा संदेश सिर्फ इतना ही है कि किसी की कॉपी नहीं करें, अपना जो म्यूजिक है उससे वो ज्यादा कोशिश करें और क्लासिकल म्यूजिक सीखें, ताकि आगे जाके उनके गाने में उनका कंट्रोल आए और अच्छा हो जाए।
1: आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहती हैं?
2: मैं संदेश तो क्या दूं, पर मैं इतना कहूंगी कि वो मुझे पसंद करते हैं, उनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहें और मेरे लिए दुआ करें वो कि मैं अपने रास्ते पे सही चलती रहूं बस। और आप सबको मेरे शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। लता जी, फिल्मी दुनिया में कुछ फिल्में केवल संगीत और गायकी के कारण ही हिट होती हैं। आप बताइए, आपकी ऐसी सर्वोच्च फिल्म कौन सी रही जो सिर्फ आपके गानों के कारण ही मशहूरी प्राप्त कर चुकी हो?
2: अभी तो कहना मुश्किल है कितनी, पर बहुत सारी हैं, जैसे नागिन थी, अनारकली थी और मुगले आजम, अभी पाकिजा। पर मैं उसमें उस ऐसी पिक्चरों में संगीतकार को ज़्यादा ये देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे गाने बनाए तो गाने वाले को भी एक ऐसा मूड आया कि भाई चलो इसको अच्छा गाएं। तो इस तरह जब सबका सहयोग होता है तभी एक फिल्म अच्छी होती है।
1: गीतकार का भी?
2: जी हाँ।
1: आपके मनपसंद गीतकार और संगीतकार का नाम बताएंगी?
2: अभी ये कहना मुश्किल है, जो कि बहुत सारे हैं, अलग अलग सबके ढंग हैं, तो मुझे सभी पसंद हैं मतलब, और गीतकार भी मुझे सभी अच्छे लगते हैं। शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।

काश ढूंढ कर ला सकते भाई और आपको सुनवा सकते लाइव उन्हें, लता मंगेशकर जी को मैंने 1989 और 90 के दौरान वो यहाँ जब शो करने आई थी अलेक्जेंड्रा पैलेस में, तब भाई उन्हें इंटरव्यू किया था और वो भी स्पेशल व्यवस्था की थी भारतीय उच्चायोग में, इंडियन हाई कमीशन में। भाई वो मीटिंग मुझे हमेशा याद रहेगी और वो मीठी सी आवाज़ आपने भी सुनी, लगता था ना बात भी कर रही है तो जैसे गा रही हैं। लता मंगेशकर जी को हम भाई प्रणाम करते हैं, आज याद करते हैं बड़ी श्रद्धा से।

0: संक्षिप्त श्रद्धांजलि। और भाई मैं बता दूं आपको कि बाली भाई भी उनके विषय में कार्यक्रम में जो है श्रद्धांजलि शामिल करेंगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Very good afternoon to you. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके के रेट याद दिलाते हुए भाई मैं कहूंगा कि अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो एट दिस टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके आर गिविंग 126.85 इंडियन रुपीज फॉर वन पाउंड। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट एसबीआई UK. State Bank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
2: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected. London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Miyan Chote Miyan this December.
5: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiyan.
2: One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: तेरा क्या होगा रे कालिया?
7: सरदार, मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
6: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
8: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
9: पूनम स्वीट सेंटर, 86 वेस्टर्न रोड, साउथ हॉल। कॉल 02085744934। डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर।
10: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से 1 से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान, इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर, 22 पामस्टन रोड, हैरो, HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678।
11: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
12: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
13: SonaTours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call Sona Tours now on 0208-951-0111.
14: Oh, look at that bump. You're glowing.
15: Oh, thanks.
14: Have you had your whooping cough and RSV vaccines yet?
15: Oh, no, not yet.
14: Definitely get both. My niece caught RSV after she was born. It was awful.
16: RSV and whooping cough can cause serious illness in young babies. Being vaccinated during pregnancy passes on immunity and helps protect your baby in their first months of life. Speak to your midwife or GP practice. Stay strong. Get vaccinated. Search nhs.uk/pregnancy vaccinations.
17: Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और बहनों भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक जानना चाहते हैं कौन है? शायर, गीतकार, लेखक,

0: वही हैं शबाना आजमी के अबू कैफी आजमी साहब, लेकिन उनकी पहचान भाई शबाना से नहीं, शबाना की पहचान उनसे थी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: अब एक संदेश भाई, संदेश ये एक तो आपको याद दिला दूं कि लखविंदर वडाली आ रहे हैं लाइव परफॉर्म करने के लिए, पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली फ्राइडे 16 अक्टूबर को क्रिस्टल ग्रैंड स्लव में परफॉर्म करेंगे और संडे 18 अक्टूबर को आईसीसी बर्मिंघम में। ये सूचना भाई गांठ बांध लीजिएगा, बहुत सुरीले गायक कलाकार हैं। इसके अलावा भाई ये भी हम कंफर्म करना चाहते हैं कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड ए पार्टनरशिप विद प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड, कौन? रागासन। डिटेल्स एट लाइका रेडियो डॉट कॉम।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
2: एक सेकेंड।
5: अरे भंग का रंग जमा हो चका,
2: नहीं मानेंगे, रंग जमा के रहेंगे।
5: फिर लो पान चबा,
2: पान भी चबा के रहेंगे। कहाँ का है? बनारस का। ओके।
5: अरे ऐसा झटका,
2: हाँ
5: लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला।

0: भाई निहाल सिंह, ये बनारस वाला पान खाने के लिए क्या बनारस जाना पड़ेगा? कहता नहीं जी, लंदन में भी मिलता है, फैल्थम में मिलता है, हैरो में मिलता है, बनारस वाला पान। कल भाई हमें हमारी अलका जी ने खिलाया, थैंक यू अलका जी। एक हमारे दोस्त थे, उनको भाई पान पहले कभी खाया नहीं था। एक दिन पान की दुकान पे पहुंच गए, कहते भाई पान खिलाओ। अब वो मीठा पान उसने खिलाया तो भाई वो दोस्त हमारे खा गए। खाने के बाद भाई उन्होंने कहा और खिलाओ भाई, एक के बाद एक ऐसे कह, उन्होंने पहली बार पान का स्वाद लिया, मीठा पान था भाई, खड़े खड़े वहाँ पे 21 पान खा गए। 21 पान खा करके और फिर जब पैसे दे के चले तो पलवाड़ी ने सोचा भाई ये तो होलसेल कस्टमर है, ये तो कदरदान है पान का। अगले दिन उनको आते देखा, दूर से आवाज़ लगाई पलवाड़ी ने, आ जाओ पाजी आ जाओ, पान लगा के खिलाते हैं आप, आ जाओ। नज़दीक आके कहने लगे नहीं आज नहीं भाई, आज तो मैं रोटी खा के आया हूँ। वो रोटियों की जगह खा रहे थे पान। स्वाद हो तो ऐसा ही होता है भाई, बनारस वाला।
1: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: South Hall Travel की वही बात भाई, वही जज्बात उनके वो याद दिला रहे हैं। South Hall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact South Hall Travel on 0208-574-8410 and remember, they are at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस।
5: Visit travelhubworld.com.
6: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
9: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
8: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
9: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में। यूके में पहली बार
8: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन।
9: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
8: शाम 7 बजे। डोर्स ओपन।
9: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 0208-426-0678।
10: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place.
11: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting. Danu

0: Mamster nu panipuri ane panipuri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती है।
3: इसे हमेशा याद रखना।
4: काश कोई आ जाए, उन्हें समझाए।
1: Usayoni, every day at 6 p.m. on Star Plus. And watch anytime on Jio Hotstar.
5: Have you noticed the way fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
7: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
9: और साहब फरमाइश आई है भाई पवन घनौरी की, जो बोला सारे कुणबे ने बैठा के और ये बता रहा कि दादा तेरी बोला हवा बांध रखी है, इज्जत रख लिए भाई, अपनी नहीं बचा पाए भाई तेरी क्यों कर बचावांगे, पर ले सुन ले, इसमें बनेगी तो बन जाएगी। ये देसी संस्कार कव्वाली का आवाज़ हमारे बहुत ही प्यारे मित्र जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साहब मैंने जैसा कहा कि आवाज तो है ना, सुनिए।

नहीं करते करते कार्यक्रम के समापन का समय हो गया। हमारी आपकी अगली मुलाकात कल होगी 10 बजे की खबरों के बाद। अब रवि शर्मा को अनुमति दीजिए और बाली भाई का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: Mamster Panipuri or Panipuri ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 अक्टूबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 077-22-87509.
3: SonaTours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
4: Like a Goon. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Goon. Or online suno Like a Goon. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: अभी जिन लोगों को लगा होगा कि चलो एट लास्ट बाली ने लता मंगेशकर जी का एक गाना तो सुनाया अभी, नहीं जी, दैट वॉज सुमन कल्याणपुर विद मुकेश जी इन फिल्म पहचान. अभी लता मंगेशकर जी के लिए आप बेताब हो रहे हैं, इट्स 97th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लता जी. तो मैं कुछ करने वाला हूँ इन द सेकेंड आवर, एंड दैट इज़ गोना बी ऑल द हाई पिच्ड songs of Lata ji. High pitched यानी कि इनके गाने जो होते थे, they were usually in, अगर कुछ music कोई समझता हो तो they are in the F note या F sharp. That was her regular, 90% of गाने सब F F sharp पे होते थे. And then the higher note would go right up to C. मतलब के when she sings an antre pe ya kahin pe bhi high notes jo lagti thi, that would be C. lekin kuch gaane the that used to go beyond C, matlab ke itne unche sur mein gaana, and she always used to accept those challenges. पर वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स को क्या कहती थी जब उनको ये हाई नोट्स दी जाती थी. बड़ा मज़ा आएगा, आपको हंसी भी आएगी. सो वी गोना टॉक अबाउट लता मंगेशकर जी. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना टेल यू कि उनके पिताजी कौन थे, उनके सिस्टर्स कौन थी, कहाँ जन्मी थी. ये सब डिस्कस नहीं करूँगा मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा जो आपको ना मालूम हो. ठीक है, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट, लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनूनस. And it is available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home, and LaikaGold.com. And in Laika Radio Midlands. And kal Midlands walon ne mera dil khush kar diya. All of them, they had come all the way from Birmingham and all the surrounding areas. And they were all in Leicester. And I met them. And there was one special gentleman who said, Ajay, yeah, that's right. And कुछ लोगों ने तारीफ की थी, उन्होंने कहा कि एक से चार हम जुड़े रहते हैं आपके साथ, एंड दे सेड सच कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स. तो मेरा दिल खुश हो गया और मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा कि आई कैन डू बेटर एंड बेटर. थैंक यू वेरी मच टू ऑल द लिसनर्स हु हैड कम देयर एंड गिवन मी द फीडबैक. थैंक यू वेरी मच.
2: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
3: दिस इज लाइका गोल्ड ग्रेटर लंदन, नाउ आल्सो अवेलेबल इन ग्रेटर मैनचेस्टर, लीड्स एंड ब्रैडफोर्ड, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन.
1: ईच करेंसी इक्विवेलेंट टू 1 स्टर्लिंग पाउंड, यूएस डॉलर्स 1.3255, Indian rupees 127.23, Afghan Afghanis 84.15, Pakistani rupees 367.32, Kenyan shillings 171.88, and Mauritian rupees 62.92.
3: Laika Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Laika Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Laika Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £100.55 per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Laika Gold.
5: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste, and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
6: Gemin. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
7: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 hour line.
8: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
9: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel, at all protected.
12: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: दोस्ती, मस्ती अने इमोशंस ने एक अनोखी स्टोरी।
15: सांभर एक काम कर, मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए।
16: नाकता चाहिए इतना?
14: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी, प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख, डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक।
17: तू गांडो छे, आगे वालो ब्रेक मारे तो पाछे वालो ब्रेक मारे ने यार। तारी मारी दो से पिक।
14: स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी। मित्रता इन सिनेमाज नाउ। यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।
18: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
19: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
18: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
19: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
20: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
21: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
20: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
21: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
20: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
21: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
22: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
23: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर, जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट अप टू 300 ऑफ। कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 02089510111।
24: अक्रॉस लंदन, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: ओके ओके, लास्ट सॉन्ग लता जी का होगा एंड देन उसके बाद वी शैल टॉक अबाउट हर इन द नेक्स्ट आवर. मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट, ऑन लाइक अ गोल्ड गोल्ड आफ्टरनून टू यू ऑल.
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.

आशा भोसले जी वंस अपॉन अ टाइम सेड, ये गीत मैं इस जन्म में तो नहीं गा सकूंगी। दीदी ने जो हाई स्केल पे जो गाया है वो कोई नहीं कर सकता। लिसन टू द हाई स्केल सिंगिंग ऑफ लता मंगेशकर एट द एंड ऑफ द सॉन्ग।

0: Wow. I can't imagine the high pitch. जैसे कि सेकेंड अंतरे में मतलब पहला अंतरा दूसरा अंतरा जहाँ पे क्रॉस लाइन आती है तरा रा और उसके अंदर वो रिपीट करती है वो लाइन और उसमें भी वेरिएशन इतनी हाई पिच. और ये गाना कंपोज किया था जैसे कि पहला गाना भी आ अब लौट चले वो गाना जिस देश में गंगा बहती है दैट्स शंकर जयकिशन एंड आरजू फिल्म जिसमें शंकर जयकिशन थे एज म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड हसरत जयपुरी जी ने ये गाना लिखा था. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई पिच्ड सिंगिंग. अब इन्होंने कंपोज ऐसे किया था कि अंतरे में पहली लाइन के बाद जो दूसरी क्रॉस लाइन आती है वहाँ पे इतना हाई पिच सिंगिंग इन्होंने कंपोज किया था. सो लता जी उनके सामने ऐसे नॉटी लुक देकर उन्होंने सुना कंपोजिशन और कहने लगी आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरा कान लाल कर रहे हैं. एंड देन शी स्टार्टेड लाफिंग एंड देन शी पिक्ड अप द पिच एंड शी डिड इट बट रोते हुए नहीं हंसते हुए. एंड रफी साहब वॉज वेरी वेल रेप्यूटेड फॉर हाई पिच सिंगिंग. सो वॉज महेंद्र कपूर साहब. एंड व्हेन आई वेंट इनटू द जर्नी ऑफ फाइंडिंग आउट हाई पिच्ड सिंगिंग तो मैंने रियलाइज किया कि जैसे सुखविंदर भी है विच हाई पिच सिंगिंग इन द मॉडर्न टाइम्स, रफी साहब वॉज ऑलवेज नंबर वन ऑन टॉप विद हाई पिच सिंगिंग. जैसे कि मन वो अपने बैजू बावरा का गाना जो था. एनीवे सो भगवान अब मैंने शुरू नहीं करना वो. लता मंगेशकर जी 97th बर्थ एनिवर्सरी. अब शी स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन शी वाज 13 इयर्स ओल्ड एंड देन एट 20 शी गॉट अ बिग ब्रेक. आएगा आने वाला फिल्म महल का गाना एंड शी सैंग द मोस्ट इन 1951. उनकी पूरी करियर में 1951 में हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स उन्होंने गाए थे समथिंग लाइक 225 सॉन्ग्स इन दैट ईयर एंड शी वाज सिंगिंग एवरी अदर डे वन सॉन्ग एवरी अदर डे. एंड दो गाने तो सुपर डुपर हिट थे उनके जो घर आया मेरा परदेसी दैट वाज फिल्म आवारा का गाना एंड देन शोला जो भड़के फिल्म अलबेला का गाना एंड दैट वाज 1951 के साल में दो गाने सुपर डुपर हिट हुए थे इनके. लेकिन इन दैट पर्टिकुलर एरा यू नो द 1950s शी वाज एक्सट्रीमली बिजी एंड द मोस्ट प्रोलिफिक इन दैट डेकेड. One song practically every other day. 225 gaane. What are you saying? And then 3,482 solos. I mean, there is quite a dispute about her filmy songs and all that. But I've come as close as possible about the numbers of solos and duets. Duets were half of the solos. Solos were like 3,482 solos and 1,919 duets and of course with other multiple singers as well. Ab this is talking only about Hindi songs ke bare mein. Rafi saab ke saath inhone sabse zyada gaane gaaye the that was 450. Kishore Kumar ji ke saath 348 ड्यूएट्स जो किशोरदा के साथ गाया था एंड मुकेश जी के साथ 161 सॉन्ग्स. अब ये नंबर गेम में देखा जाए तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स गाए थे 689 सॉन्ग्स एंड शंकर जयकिशन के लिए 461 सॉन्ग्स एंड आर डी बर्मन जी के लिए 355 सॉन्ग्स एंड ज़ीरो maybe one song with O.P. Nair और वो भी उनके लिए नहीं गाया था. वो एक O.P. Nair की जो फिल्म थी उसके अंदर लता जी का गाना डाला गया था लेकिन O.P. Nair ने कभी उनको नहीं गवाया था. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लता मंगेशकर जी एंड हर हाई पिच्ड सिंगिंग. अब मैंने जो गाने चुने हैं उसके अंदर यू कैन से उनका जो स्केल हुआ करता था 90% ऑफ टाइम्स वॉज एफ या एफ शार्प, लेकिन कॉम्पोजिशन ऐसा बनता था कभी कभी जब द हाई पिच वेंट बियॉन्ड द सप्तक, सप्तक में जो सी नोट होती है, एंड दैट इज फाइव और सिक्स सॉन्ग्स आई हैव चोजन, तो सुनते रहिएगा। एंड देन कल से मैं आपको लता जी के ऐसे गाने सुनाऊंगा जो आप खुश हो जाएंगे विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम। सो द होल वीक वी आर गोना कवर लता मंगेशकर, एंड आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, तो मैं आपको ऐसी जर्नी पे ले जाऊंगा जहां पे आपको मज़ा आ जाएगा। एंड बॉलीवुड की हर एक हीरोइन जो है, हर एक मतलब 99% ऑफ हीरोइंस जिनके लिए उन्होंने गाया था, उनके गीत मैं आपको सुनाता रहूंगा। सो सुनते रहिएगा एंड जुड़े रहिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And looking at the SBI rates, we have your £1 in British sterling can get you up to 126.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड।
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties.
11: लंडन हलो गरबे गुमवा श्री 27 गाम पाटीदार समाज यूरोप साथे मानो नवरात्रि भारत ना लाइव बैंड साथे 10-20 अक्टूबर सांजे 7:30 थी एट 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली एडल्ट टिकट्स £10 16-17 अने 18 अक्टूबर 15 pounds 5-10 वर्ष ना बाड़को ने 5 pounds अंडर 5 फ्री 11 रात नो सीजन पास 100 pounds रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क 27 गाम पाटीदार समाज ना गरबा इटले Bestum Best
12: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
13: નવરાત્રી માં કૃપા ફાઉન્ડેશન સાથે ગરબે ઘૂમવા તૈયાર થઈ જાઓ.
14: 10-19 ઓક્ટોબર દરરોજ સાંજે 7-11 વાગ્યા સુધી ગરબા અને દાંડિયાની રમઝટ ભારત થી પધારેલા કલાકારો સાથે.
13: ટિકિટ્સ મંડે ટુ થર્સડે એન્ટ્રી 5 pounds, ફ્રાઈડે ટુ સન્ડે 7 pounds. વેન્યુ માં કૃપા ફાઉન્ડેશન હોલ, ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 2, 10 સ્ટોનફીલ્ડ વે, સાઉથ રાઇસલિપ, HA40JS.
14: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-509.
13: એ હાલો ગરબે રમવા.
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक.
16: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
15: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
17: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
18: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
19: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.
0: Gusakhi Maaf, if you have just joined us, Laika Gold Pay, we are doing a tribute of Lata Mangeshkar Ji on our 97th birth anniversary. High-pitched songs of Lata Ji.

0: now visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323.
2: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से 1 से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0208426-0678।

0: Oh my God, oh my God. Yesterday, you know, in Leicester, we had Indrani Datta singing this particular song and people clapped like anything. She maintained every note and she sang the high-pitched version as well. And bada maza aaya kal. And I am actually presenting songs of Lata Mangeshkar where she has sung in high pitches. And she never complained to the music directors, really speaking. एंड देखा जाए तो इनकी सिंगिंग में जो एक बदलाव आता रहा जैसे साल निकलते गए एंड इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द 1940s. आई वुड से लता सैंग फॉर थ्री जनरेशंस ऑफ सम एक्ट्रेसेस. फॉर एग्जांपल इन्होंने गाया था काजोल के लिए. काजोल के लिए उन्होंने 90s में गाया, ठीक है. तो उन काजोल की माँ तनुजा के लिए भी गाया एंड देन उसके बाद तनुजा की माँ नूतन के लिए भी गाया और नूतन की माँ शोभना समर्थ उनके लिए भी गाया. यू कैन सी द थ्री जनरेशंस एंड द लास्ट सॉन्ग शी सैंग वाज इन 2015 एंड मोर देन 7 decades since her first song. 7 decades since her first song. 70 saal. I mean, can you believe 70 years of singing and singing and singing and singing and some of these challenging songs that I've been presenting last hour and in this hour as well. You know, as old, I would say the 7 decades since her first song is as old as the Bollywood that we know. Don't you agree with me? एंड देखा जाए तो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज कैफी आजमी. कैफी आजमी ने ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल गाने जो लिखे, उनमें से सबसे बेस्ट गाना जो मुझे लगा जो लता मंगेशकर जी ने गाया था वो था फिल्म हीर रांझा का. एंड मैं वही गाना पेश करूँगा जो कैफी आजमी जी ने लिखा और लता जी ने गाया और मदन मोहन जी ने संगीत दिया था. जी हाँ, तो सुनते रहिएगा और लुत्फ उठाते रहिएगा. एंड रेस्ट ऑफ द वीक, ऑल थ्रू आउट द वीक, मैं लता जी के गाने आपको पेश करता रहूँगा. किसी ने मेरे को एक फरमाइश भी भेजी है, बट मैं देखूँगा इफ इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ हाई पिच्ड सिंगिंग ऑफ लता जी, बिकॉज लास्ट आवर एंड दिस आवर आई एम जस्ट डीलिंग विद दोज सॉन्ग्स विच वर हाई पिच्ड इन सिंगिंग. एंड कल से मैं ऐसे गाने आपको पेश करूँगा विच विल कवर ऑल द 90 हीरोइंस दैट शी सैंग फॉर. यस, सुनते रहिएगा, लुत्फ उठाते रहिएगा. मैं हूँ बाली ब्रह्मन ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव DAB एलेक्सा गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप. And in the Midlands, it's 447th day of Laika Radio Midlands. Sandy's back. I haven't seen him yet, but I'm expecting him. Drive time. Ye ya wo. Lekin aayenge zarur. And Raj Patan on Laika Radio Midlands at 4 p.m. Sunte rahiyega.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Okay, £1 in British sterling can get you up to 126.85. 126.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
10: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
12: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
11: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
12: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
13: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575 केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD प्लीज कॉल ऑन 07466997575
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
14: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
16: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
17: 10 डेज साउथ अफ्रीका एवरी मंथ फ्रॉम नवंबर टू मार्च बुक बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ एंड गेट 200 ऑफ विजिट sonatours.co.uk और कॉल 0208-951-0111
18: Like a Goal London ka number one Asian retro music station ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par Alexa pe bolo play Like a Goal aur online suno likeagold.com pe
19: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra stream it now and be a part of the conversation

हमें क्या हो गया है, ये सोचकर मुझे भी ऐसा लगा कि हमें क्या हो गया है कि मैंने नूतन को तनुजा की माँ बोल दिया। I'm so sorry. मैं हमेशा ट्रिब्यूट करता हूँ एंड आई ऑलवेज मेंशन नूतन एंड तनुजा सिस्टर्स, बट व्हेन आई सेड थ्री जनरेशंस इट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड दैट ऑब्वियसली लता जी सैंग फॉर काजोल एंड देन शी सैंग फॉर तनुजा एंड नूतन द सिस्टर्स, बट आई सेड शी सैंग फॉर तनुजा जो काजोल की माँ है एंड देन तनुजा की माँ नूतन। आई एम सो सॉरी, मैंने अपने आप को इतना बड़ा चांटा मारा एंड आई गॉट अबाउट 40 मैसेजेस इंक्लूडिंग कलरा जी। ऑफकोर्स कलरा जी, आपको तो मैं टेस्ट कर रहा था, यू हैव पास

0: थ्री जनरेशंस। अगर ये सच होता कि तनुजा की माँ नूतन, तो फोर्थ जनरेशन हो जाता ना, वो भी तो सोच है एक। सो आई डू अपोलोजाइज टू ऑल द लिसनर्स एंड टू दोज हु डिडंट नोटिस इट। एनीवे आई हैव करेक्टेड माई सेल्फ, ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसा होता है कभी कभी यार, मेरे को भी कड़क चाय की ज़रूरत है। 3 बजे घर पहुंचा था लेस्टर से, गाड़ी चला के ले गया था, शो में था, वापस आया 3 बजे, फिर लता जी का ये ट्रिब्यूट किया सुबह 5-6 बजे, तो थोड़ा सा कड़क चाय का मामला हो गया। और ये स्लिप अप तो होता रहता है ना, मैं भी तो इंसान हूँ, दैट प्रूव्स दैट आई एम नॉट अ रोबोट। Enjoy yourself. And now I'm going to tell you something interesting. Okay. Okay, here we go. Kavita Krishnamurti live. The legend Kavita Krishnamurti performs live at the Royal Albert Hall on Sunday, 1st of November. Brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets from the venue, box office, exclusive radio partner, Laika Radio Network. And Laika Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand, Ragasan. Details at laikaradio.com. Laika
1: Gold. Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price
2: at all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.

0: शंकर जयकिशन ने म्यूजिक दिया।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स। जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: लाइका रेडियो नेटवर्क।
0: A real treat for you, Lata Mangeshkar and Mohammed Rafi singing together this song and the next song.

0: अब आ रहे हैं सैंडी शाह एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पे राजपत्तन।
1: बाली ब्रह्मभट्ट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स।
0: आर डी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स, इसमें लता जी और रफी साहब दोनों हाई पिच में एक दूसरे के सामने अड़े रहते हैं। क्या गाना है, क्या सिंगर्स हैं। प्यार का मौसम 1969। कल तक के लिए इजाजत, कल मैं फ्रेश होके आऊंगा, गलतियां नहीं करूंगा।

0: Drive with Sandy Shah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel,
1: who are also known to be very competitive holiday offers from them for the Bay. So why don't you contact Southall Travel today on 0208 574 8410. And don't forget, Southall Travel is at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Yeah, like a gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
0: One performer,
5: countless personalities.

0: A whole universe of entertainment.
1: Sunil Grover, live UK tour 2026.
0: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
1: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
3: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
4: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में
3: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
4: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में. यूके में पहली बार
3: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन.
4: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा.
3: शाम 7 बजे डोर्स ओपन.
4: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02284260678.
5: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी.
6: सामने काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए.
7: नाकता चाहिए એટલે
5: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी. प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख. डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक.
8: तू का अंडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे ने यार
9: तारी मारी दोस्ती पिगो.
5: स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी. मित्रता इन सिनेमाज नाउ. यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel Auto Protected.
3: Dosti, masti ane emotions ni ek anokhi story.
4: Samad ek kaam kar medical dele ane nakta chahiye.
5: Nakta chahiye itla?
3: Soul Sutra Productions presents Mitrata, friendship ni love story. Produced by Parthiv Gohil and Mansi Parekh. Directed by Onil Karnik.
6: Tu ka ando chhe?
7: Aagar baro break mare to paachar baro break mare se yaar.
8: Tari mari dosti.
3: Starring Viraj Khilani, Deep Vaitya, Vishal Parekh and Vishwa Joshi. Mitrata in cinemas now. UK release details माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।
9: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा।
10: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम।
9: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
10: रात 8 बजे से देर रात तक। टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट। 5 साल से छोटे बच्चे फ्री।
9: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए। टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
10: 0795645872।
9: तो मिलते हैं गरबा में।

0: This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर.

0: Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
1: Dil ne ye kaha hai dil se
2: bol chudiya.
0: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
4: सांभर एक काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए इतना
3: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
5: तू अंडो छे आगे मारो ब्रेक मारे तो पाछो मारो ब्रेक मारे छे यार
3: स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज नाउ यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
7: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
8: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 अक्टूबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-287-5509
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
13: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
15: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics Non-stop classics. Leica Gold.

0: Andy Jar on Gold Drive. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So £1 getting you 127.28 Indian rupees, 84.36 Afghani, 367.58 Pakistani rupees, 163.32 Bangladeshi taka and 438.85 Sri Lankan rupees.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And gold is trading at £100.25 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: So here we are, Anisa Nasser.
2: हाँ जी,
1: की हाल चाल ने?
2: मेरे हाल चाल आपके बिना बहुत पतले हो गए थे लेकिन आज आपको देख के बहुत ठीक हो गए।
1: मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी लंबी फेंक दी अनीसा, मुझे मजा आ जाता है।
2: हम तो सच बोलते हैं चाहे किसी के कलेजे में लगे।
1: कलेजे में लगे, हाँ। क्या बात है,
2: मैं तो सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है।
1: सही बात। आप कैसी?
2: मैं कैसी हूँ आप बताएं, ये तो आप बताएं कि अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या
1: करूं? मैं नहीं कर सकता मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं आपकी तारीफ के लिए।
2: आप झूठ नहीं बोल सकते, ऐसा बोलो ना।
1: नहीं, बल्कि इतने अल्फाज मेरे पास है ही नहीं।
2: अच्छा अच्छा, नहीं है?
1: हाँ जी,
2: हाँ जी, बोलिए, फरमाइए, क्या हुक्म?
1: हुक्म थे कुछ नहीं है, सिर्फ ये या वो है।
2: हाँ जी बताइए।
1: हाँ जी जी, तो क्या हो रहा है? टाड़ी, हाँ, टाड़ी बिल्कुल, बिल्कुल, आवाज बिल्कुल। मेरे कन्ना भी पहुंचे।
2: ये लें जी, ये लें। हाँ, आपको रात को ख्वाब में भी आएगी, आप डरेंगे।
1: शायद पहुंचे मेरे कन्ना नो।
2: राइट
1: जी। अच्छा, ओए, ओए, ओए, ओए, ओए, बड़ी देरी तक समझ आई है। हन्नी हन्नी,
2: हाँ जी।
1: अच्छा,
2: सी दैट्स व्हाट आई वाज मिसिंग,
1: ये या वो। कैफी आजमी, दिल नु लग दादा ना कह के मन कुछ होता है। सो दो गाने हैं, एक ड्यूएट है, एक सोलो है।
2: ओके,
1: सो पहला गाना है सोलो, मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम,
2: ये सोलो तो नहीं हुआ ना?
1: मैं क्या, ड्यूएट है।
2: अच्छा,
1: और सोलो है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों रफी साहब का हकीकत। व्हिच वन आर यू गोइंग फॉर?
2: अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: ओह रियली?
2: यस।
1: Oh, a couple of people predicted you were going to go for the
2: really?
1: other one. Yes.
2: Okay, oh, पता है, wow. वो जितने दिल से और उसमें जो patriotism, मतलब you can feel it.
1: Okay.
2: हाँ.
1: So you've gone for that.
2: Yeah.
1: And which one will I go? So again, as I was saying, I was really like,
2: and then you decided.
1: किसको दूँ? But what you've just said. Is कहने ने सोला ने सच बोली है तो जो दर्द ते जज्बा इस गाने की ना अब तुम्हारे जिन्हें नहीं भी रोना वो रोना शुरू कर
2: देगा। सही है,
1: सही बात है ना। सो माय वर्क गोस फॉर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इवन दो द ड्यूएट इज जस्ट सब्लाइम।
2: एब्सोल्युटली।
1: एंड आई ऑलवेज थिंक ऑफ दिस सॉन्ग एंड आई थिंक ऑफ धर्मेंद्र। द रीजन आई डू, ही वंस गेव एन इंटरव्यू दैट व्हेन दिस सॉन्ग, इट वाज वन ऑफ हिज फर्स्ट मूवीज।
2: ओके।
1: एंड ही गोस कि जब रफी साहब ने मेरे लिए गाना शुरू किया, मुझसे बात करने के बाद उन्होंने वो गाना भी लो लेवल पे गाया कि आवाज बारीक और आस्ता निकली।
2: यही तो खूबियां हैं ना जो आजकल के लोगों में नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है, बहुत
1: एक ही, एक ही,
2: एक ही, वो तो खैर एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे।
1: एक ही सी। But thank you very much indeed. It's lovely to be back. Lovely to see you, Anisa.
2: Thank you. Likewise.
1: Fabulous to see you. I just don't like the color of your top. That's all.
2: You what?
1: I don't like the color of that top.
2: Oh my God, that is such a beautiful color, brown.
1: I just like brown.
2: चलो ते मैं तेनु दिखाने से थोड़ी ना पाया।
1: होनी तो तू क्या तू मेरे अल्लाह।
2: नहीं, I missed you, but it doesn't mean that मैंने कपड़े तुम्हारी चॉइस को देख के पहनूंगी मैं यार।
1: तो अन्य लंबी छुट्टी मैं पकड़ लेती जाके मैं भी पहुंच गया होते। Anyway, it's a pleasure to speak to you again. It's nice to be back. Thank you to all of you who voted. The next song has won. And it's very nice. If you don't forget, the lovely Anisa Nasser is next, dressed in brown. Don't forget Gold Nights. And if you enjoyed Drive at all today, please give me another go tomorrow. Look after yourself. Have a lovely night.
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: This is Sandy Shah on Gold Drive. Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. Still got long delays and two lanes are closed on the M40 in both directions at the M25. It's due to an accident and recovery work. Congestion backed up to Park Road. Delays on the M4 onto the elevated section eastbound from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. Still slowing on the A312, the Parkway southbound before the M4 Junction 3. And the A312 Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to North Holt Station. Queuing on the A406 North Circular Road, that's in both directions as you head in towards the Hanger Lane directory to the Tube, and severe delays on the Victoria line due to problems with the signals at Brixton, and minor delays on the Central line due to cancellations. That's your latest traffic and travel.
2: My name's Mark and this is my NHS story. The sensation in my neck was painful all the time. Once I spoke to my GP, they referred me to my CDC. They got me in very, very quickly. The amount of pain I went through for something so easy, why hadn't I done this 4 months before?
3: The government is opening new community diagnostic centres with many already available 12 hours a day, 7 days a week, so the NHS can be there for all of us when we need it. Find your closest one at gov.uk/NHS Fit for the Future. Available England-wide.
0: This is Leica Gold. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
4: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
0: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
4: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
0: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
4: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
0: टिकट बुक करो segalondon.co.uk।
4: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।
5: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल, Auto protected.
8: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा।
9: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम।
8: आइए नक्षत्र हॉल, फेल्थम, TW13 7NA।
9: रात 8 बजे से देर रात तक। टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट। 5 साल से छोटे बच्चे फ्री।
8: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए। टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
9: 07956458872।
8: तो मिलते हैं गरबा में।
10: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11,
11: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danu 11, 11. Danu Properties.
13: 11 वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
16: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
17: Up next, Anisa Nasir with the big show on Like a Gold.
18: Hello friends, main hu Sarita Sabarwal. Every weekend 4 till 7 bahut si meethi meethi baatein aapke sath share karti hu. Saturday and संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
17: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: पालकी में तो नहीं अपनी लालों पे सवार होकर हम आ गए अपने सज्जन सामईन के पास। वो जो भेजे थे तेरी मस्त निगाहों ने पयाम, वो जो भेजे थे तेरी मस्त निगाहों ने पयाम, एक बार और जरा उनकी वजाहत करना। हमको आदाब मोहब्बत नहीं आते सीमा, हमको आदाब मोहब्बत नहीं आते सीमा, हमको बस टूट के आता है मोहब्बत करना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 126.8 Indian rupees. And don't forget to exchange in branch online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch.
0: और सच्ची में अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस ना होना कि जब अनीसा का प्रोग्राम शुरू होगा तभी आप बूझेंगे कि गीतों में क्या कॉमन है, तो मेरे सुनने वाले तो सैंडी के शो में शुरू हो जाएं ये बताना कि आज अनीसा के प्रोग्राम में ये थीम होगी। जरा सा सब्र नहीं है, जरा सा सब्र। और दे गलत पे गलत, दे गलत पे गलत जवाब, जैसे कि मनु जी एज ऑलवेज, और अशोक बाली जी दुल्हन कॉमन नहीं है, रुखसाना अफजल जी, चौधरी फरीद अहमद जी, ताहिर जी, रचना जी, मीनाक्षी जी, वीना जी, अंजुम जी और दिया जी कहती एक दूसरे को बता रहे हैं कि कितना प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ और ही चक्कर है, जिसे सबसे पहले किसी ने बूझ लिया है। लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें, गीतों में क्या कॉमन है, नए सुनने वालों को बता दूं यही पूछना होता है। कोई लिरिसिस्ट, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई एक्टर या कोई वर्ड, कुछ भी हो सकता है।
1: दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो। This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com. One performer,
2: countless personalities,
1: a whole universe of entertainment.
2: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions,
2: supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network. Work.
3: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
4: नवरात्रि माँ कृपा फाउंडेशन साथे गरबे घूमवा तैयार थई जाओ।
5: 10-19 ઓક્ટોબર दररोज सांजे 7 થી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ગરબા અને દાંડિયાની રમઝટ ભારત થી પધારેલા કલાકારો સાથે।
4: ટિકિટ્સ મંડે ટુ થર્સડે એન્ટ્રી £5, ફ્રાઈડે ટુ સન્ડે £7, વેન્યુ માં કૃપા ફાઉન્ડેશન હોલ, ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 2, 10 સ્ટોનફિલ્ડ વે, સાઉથ રાઇસલિપ, HA40JS।
5: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-509।
4: એ હાલો ગરબે।
6: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
7: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
3: sonajewelers.co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027 बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट 400 ऑफ ऑल लूज द डिस्काउंट कॉल सोना ज्वेलर्स नाउ ऑन 02085101111.
4: Like a Gold, London का number one Asian retro music station. अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Chalo Sajna, jahan tak ghata chale. Bemol hai ye phir kisi bhi daam ki nahi. Bemol hai ye phir kisi bhi daam ki nahi. दुनिया तेरे बगैर मेरे काम की नहीं. कैसे जुदा करूं मैं तुझे अपने आप से, कैसे जुदा करूं मैं तुझे अपने आप से, ये उम्र भर की बात है, एक शाम की नहीं. बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि चूंकि आज लता जी इस दुनिया में होती तो अपना जन्मदिन मना रही होती. आज उनकी हेवनली बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है. उनको बहुत बहुत बहुत प्यार से हम हमेशा याद करते हैं और आज भी कर रहे हैं. गीतों में जाने अनजाने उनके ही गाए हुए गीत शामिल हैं, लेकिन लता जी आज थीम में नहीं है. मनु जी, अशोक बाली जी, ओए होए, अशोक बाली जी तो इस बात पे भी नाराज़ हो रहे हैं कि मैंने दुल्हन नहीं कहा था. अरे दुल्हन मनु जी ने कहा था, तो जवाब तो फिर भी गलत है ना अशोक जी. अब इतना दिल पे मत लगाओ यार. कोई बात नहीं, हो गया हो गया. ये तो ऐसे ही बस देख रही थी कि आप सुन रहे हो ध्यान से कि नहीं सुन रहे. मनु जी, अशोक बाली जी, रुखसाना अफजल जी, चौधरी फरीद अहमद जी, ताहिर जी, रचना जी, मीनाक्षी जी, वीना जी, अंजुम जी, रोहित जी, पन्ना जी, रमेश जी, पन्ना जी, रमेश जी. एक तो मेरा दिल चाह रहा है आज आपको गलत जवाब देने पर भी पनिश करूं और इतने दिनों के बाद हाजिरी लगवाने पर भी. आप बताएं, माफ़ किया जाए कि आपको मतलब कोई सजा दी जाए? खुद ही फैसला कर लीजिए. जवाब गलत है आपका. सरोज जोशी जी, आपका भी जवाब गलत है. सबसे पहले जिन्होंने पूछा वो कोई और नहीं है, दक्ष शर्मा जी. कमाल कर दिया आपने.
0: ये है Like a Gold Feel Good Classics with Anisa Nasir.
2: राजा ऑफ दी आवर दक्ष शर्मा जी. फरजाना जी, आपको रानी ऑफ दी आवर बना देते हैं. संध्या भावसर जी, दीनी जी, मंजीत संगर जी, श्वेता जी, श्वेता जी के बाद अमित पटेल जी, जैस जी, वेलकम बैक. हॉलीडे से आई हैं, जरा दिमाग बहुत फ्रेश है. झट से सही जवाब दे मारा हमारी स्क्रीन पर. बिल्कुल सही जिशान जी, नौशीन खान जी. तो ये गीत आप सबके नाम. गुड इवनिंग.
3: अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना. हुस्न चला कुछ

0: यार वाकई भाई कमाल हो गया, बड़े ठीक ठीक जवाब भी आ रहे हैं और कुछ गलत जवाब भी अब तक पहुंचे। अमिता जी आप तो वैसे यूजली बूझ लिया करते हो, आज थोड़ा सा चूक गए आप, लेकिन एटलीस्ट आपने हिस्सा लिया। विजय गिडोरी जी आपका नाम तो मैं भूल ही चली थी, आप तो बदनाम होने से बाल बाल बचने वाले थे, लेकिन नहीं, मेरी शातर निगाहों ने देख लिया आपका नाम दोबारा से और वो जवाब आपका सही नहीं है। मोहम्मद अयूब चौहान जी, शगुफ्ता जी और उमर जी ऑल द वे फ्रॉम दुबई, आपका जवाब बिल्कुल सही है। जैसी जी कहती हैं, निशा जी सच में रेडियो और आपको सुनने में जो मज़ा है ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं। क्या बात है, तो आप फिर मार ले जब भी हो जाए।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: My name is Karen and this is my NHS story. You don't realise how blind you are until you have cataract surgery. I was referred to a surgical hub and they booked us in for an operation. It was about 3 weeks before I was there. It's very, very quick.
4: The government is opening more surgical hubs with more than 120 already operating across England, so the NHS can be there for all of us when we need it. Find your closest one at gov.uk/NHS fit for the future.
2: This is Anissa Nesse with The Big Show.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK
8: करम सत समाज UK के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा।
9: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम।
8: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
9: रात 8 बजे से देर रात तक। टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट। 5 साल से छोटे बच्चे फ्री।
8: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए। टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
9: 0795645882।
8: तो मिलते हैं गरबा में।
10: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी।
11: सामने काम कर मेडिकल देने अने नाकता चाहिए
10: इतना। सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी, प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख, डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक।
12: तू गांडो छे, आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछे वालों ब्रेक मारे ने यार।
10: स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी। मित्रता इन सिनेमाज नाउ। यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप. दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: आज लगता है बस तमाशा था, आज लगता है बस तमाशा था। वो ताल्लुक जो बेतहाशा था, हम उसी बुत के हाथों टूट गए, हम उसी बुत के हाथों टूट गए जो तखय्युल में खुद तराशा था।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 आपको आज क्या दिला सकता है? कौन सी करेंसी? मैं आपको बता सकती हूँ, अभी 127.2 इंडियन रुपीस, 84.1 अफगानी, 367.3 पाकिस्तानी रुपीस, 163.2 बांग्लादेशी टाका एंड 1.3 US डॉलर।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £100.28 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: कुछ और लोगों ने बूझ लिया है और जिन्होंने नहीं बूझा वो हैं अरुणा जी, एटलीस्ट यू ट्राइड, थैंक यू वेरी मच। और तोची जी, पॉल मसी जी, दिनेश पोपट जी, रीटा जी, सलमा जी, गीता हर्षद, जोशी जी और एजाज जी, आपके जवाब बिल्कुल सही हैं।
1: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर।

सजा नसीब ने दे दी नजर मिलाने की, सजा नसीब ने दे दी नजर मिलाने की, के शाख ही न रही मेरे आशियाने की। खिजां बहार में आई है हसरतें लेकर, रहेंगी याद हमें करवटें जमाने की। गिला फलक से नहीं उसकी बेवफाई का, गिला फलक से नहीं उसकी बेवफाई का, हंसा हंसा के है आदत उसे रुलाने की। वन नोली मलिका तरन्नुम नूर जहां जी, ये प्यारा सा गीत मैं अपनी बहुत प्यारी सी सिमी जी के नाम करना चाहूंगी। दोस्तों की दोस्त, अपनायत से मोहब्बत से भरी हुई, कैसे किसको इज्जत एहतराम देना है, किस तरह किसकी मदद करनी है, किसके लिए आगे बढ़कर जो है कुछ करना है, कुछ भी करना है। लव यू सिमी जी, ये प्यारा सा गीत आपकी नजर। रानी जी, सईदा जी, तारिक राहील जी, अली जी अटलांटा से, पूनी जी, आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। और तारिक राहील जी, आपने तो सच्ची में जवाब भिजवाया और साथ लिखा चलो अच्छा हुआ हम भूल गए। एंड गेस व्हाट, वही गाना नेक्स्ट था क्यू में। इसको कहते हैं, नहीं, दिल से दिल को राह नहीं कहते तारिक साहब, इसको कहते हैं दिलों के बीच में मोटरवे का होना। और मेरे और मेरे सुनने वालों के दिलों के बीच में मोटरवे ही है ना। बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी नसरीन रमजान जी का, जिन्होंने आज इतना खिलाया कि मुझे जागते रहने के लिए काम पर आकर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की चाय पीनी पड़ी ताकि मेरी आंखें खुली रह सके, वरना लोग समझेंगे पता नहीं किसका इंतजार कर रही थी आंखें खुली। थैंक यू नसरीन, लव यू।

चलना कॉमन रहा गीतों में। दिलीप सरोज जी थोड़ा सा जल्दी भेजा करें जवाब। जवाब सही है आपका भी, चलना चली चला चलो, हर गीत में यही सुनने को मिला। गुड इवनिंग।

0: देखा हसीन शख्स तो महसूस ये हुआ, देखा हसीन शख्स तो महसूस ये हुआ, इस दिल पे इख्तियार के अब दिन नहीं रहे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे नाम कर दीजिए, जिनमें हरप्रीत सिद्धू जी जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। अब उनका नाम मुझसे मिस हो गया तो मुझे थोड़ी बटरिंग करनी पड़ेगी। तो हरप्रीत जी आपके नाम करते हैं, कहती हैं आई लव द म्यूजिक इन दिस सॉन्ग। व्हाट अबाउट द वर्डिंग? वर्डिंग में क्या बुराई है, इतने प्यारे तो अल्फाज हैं। बहुत ही प्यारा गीत और बहुत प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम। विजय जी कह रहे हैं, विजय गुरूरी जी के जस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। चलिए आपके भी नाम करते हैं। दीनी जी कह रही हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के आगाज़ के दोनों गीत बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। रुखसाना जी कह रही हैं वाओ लवली प्लेलिस्ट, आप लोगों की पसंद है भाई, उसको जहन में रख के चुनते हैं हम गीत। और ऐसा ही कहना है हमारी दीदी अडवाणी का। वजाहत जी आप भी सुन रहे हैं, बेहद शुक्रिया। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अब चंद अल्फाज मैं दोहराने जा रही हूँ कुछ ही देर में, और उन्हीं की रोशनी में आप बूझेंगे कि मैं कौन से गीत की बात कर रही हूँ। उल्टा पुल्टा जिसे आपको सीधा करना होगा, और उसके साथ साथ शामिल रहेगा प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के साथ पंजाबी तड़का भी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you up to 126.8 Indian rupees. Do not forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Aur bhi T and C's yahan bhi apply. Jo sabse pehle jawab dega wo raja ya rani banega. Lekin na bhi sahi ho jawab to kam से कम मुझे ये पता तो चलना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं। तो जरा भिजवाइएगा जवाब, ये मैसेज मैसेज नहीं, ये अल्फाज सुनने के बाद। देखा था हमने, टूट गया मत रोना, देखा था हमने टूट गया मत रोना, देखा था हमने टूट गया मत रोना।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: BT believes brilliant things deserve protection. Beekeepers across the UK work hard every day to protect their hives from invasive predators. Just like BT protects UK homes from over 10 million online threats every month, keeping you and your family safe from scammers. Advanced threat protection as standard, only from the UK's best broadband. BT, protecting brilliant things. Based on BT full fibre, verify at bt.com/claims.
1: Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas. He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares, and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
5: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
6: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
7: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra? Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
11: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
12: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
13: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
14: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Jagjit Singh ji ki taiyar karda dhun aur upar wale ki banayi bemisal awaaz. Kya baat hai Suresh Vatkar ji. ए रब्बे कायनात मुझे एक रात दे, इफ़्ज़ाना ए हयात मुझे एक रात दे, बस एक रात दे दे मगर उसके साथ दे। ये प्यार करने वाले भी ना बेचारे सच्ची भिखारियों जैसी हालत हो जाती है, डर डर के जीते हैं। अब इनकी सुनिए, फरमाते हैं तहे शमशीर घुट घुट के मेरी जाने हंसी निकली। तहे शमशीर यानी यूं करके ऊपर जो है ना वो खंजर रखा हुआ है, तलवार रखी हुई है, तो कह रहे हैं तहे शमशीर घुट घुट के मेरी जाने हंसी निकली, तमन्ना आपके दिल की भी निकली या नहीं निकली, कहूँ क्या पहले ही आंखें निकाली आपने मुझ पर, अभी कमबख्त पूरी बात भी मुंह से नहीं निकली।
0: लाइका गोल्ड हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ हॉल ट्रैवल।
2: साउथ हॉल ट्रैवल जो जाने जाते हैं अपनी कंपेटिटिव हॉलिडे डील्स टू दुबई के लिए, तो कांटेक्ट कीजिएगा साउथ हॉल ट्रैवल को आज ही 0008574 8410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल, याद रहे एट ऑल प्रोटेक्टेड हैं।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: लीजिए, यूं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बूझ चुके हैं गीत को, सिवाय रुखसाना जी और हरप्रीत जी के। अब तक जितने भी मैसेजेस आए हैं सबके सब जवाब सही हैं, तो मैं फिर भी आप लोगों के लिए दोहरा देती हूं, अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया तो कोशिश करके देखिए। देखा था हमने टूट गया मत रोना, और आज तो मेरे सुनने वाले ना मैनू कुछ हो जाना जे सच्ची, मतलब ऐसे ऐसे लोग ठा ठा करके जवाब भिजवा रहे हैं जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बूझ पाएंगे सच्ची में, लेकिन कमाल है, अभी छा गए आप लोग।
0: दिस इज अनीस नासिर ऑन लाइक अ गोल्ड ग्रेटर लंदन।
3: वे दुनिया उसी के

है दुनिया उसी की, जमाना उसी का। इसीलिए तो प्यार करने वाले कहते हैं, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझको आराम तो नहीं होगा। जॉन एलिया जी का ये बहुत ही प्यारा सा कथा। और लीजिए फिर वही बात कि एक से बढ़कर एक गीत हमारे यहाँ 24 घंटे सात दिन सुनवाए जाते हैं। पसंदीदगी के लिए बेहद शुक्रिया, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। और गुल जी कहती हैं कि महबूब दुनिया का वो हसीन कातिल है जिस

0: जरा सामने तो आओ, चलिए। लो जी, सामने बहुत सारे लोग आए हैं जिनमें ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट हैं कमल शिवनानी जी। उनका जवाब बिल्कुल सही है। सबसे पहले उन्होंने ही मुझे सही जवाब भिजवाया है, सो ही इज द राज ऑफ द आवर। एजाज जी, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। वैसे आप मुझे ये भी बताइए, आपकी अम्मी जान की तबीयत कैसी है? आप आई होप के शी इज़ डूइंग वेल इंशाल्लाह। आज एक और दोस्त की माँ जी को देखा, उनकी भी तबीयत कुछ इतनी अच्छी नहीं है। और ये ऐसा फेज़ होता है कि मतलब दिल बहुत दुखता है पेरेंट्स को गोइंग थ्रू, मतलब तबीयत खराबी, तबीयत नासाज, नॉट लाइक जैसे वो हमेशा हमें नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं वक्त के साथ साथ। ऑब्वियसली ये एक कुदरती अमल है, हम सब इससे गुजरते हैं, लेकिन दिल दुखता है माँ बाप को ऐसी सिचुएशन में देख के। तो मेरी दोस्त की मम्मी के लिए भी बहुत सारी दुआएं और आपकी अम्मी जान के लिए भी। तारिक राहिल जी, कुलबीर सिंह जी, अंजुम जी, सईदा जी, सलमा जी, रीटा जी, दिलीप सरोज जी, मीनाक्षी जी, निलेश जी, दिनेश पोपट जी, मीनाक्षी ब्रह्मभट जी, रानी जी, तोची जी, गीता हर्षद जोशी जी, आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। बेप्सी राय जी, ए वेरी बिग हेलो टू यू, कैसी हैं आप? आई होप यू वेल। हेलो के अलावा भी कभी कुछ लिख दिया करें।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
0: अच्छा तो आगे चलो हूं ना।
1: Currency updates sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 127.2 Indian rupees, 367.3 Pakistani rupees, 84.5 Afghan afghani, 163.2 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LAIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £100.16 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley. Leica Radio. Now in more places than ever before. Birmingham, Bradford, Huddersfield and Leeds.
3: Punjabi Torka with Anissa.

0: जियो शाजिया मंजूर जी जियो, अज भी उसका फोन नहीं आया, अज भी उसका फोन नहीं आया, अज भी खैर खबर ना कोई, अज भी गीत हिजर दा लिखिया, अज भी नजमा विच ही रोई, अज भी उसका फोटो चुमिया विच कापी दे तरके, अज भी औखा सा आया है, अज भी बच्चियां मर गए।
1: This is Anisa Nasir with the big show. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas. He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares, and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
3: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
4: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
3: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
4: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में यूके में पहली बार
3: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन
4: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
3: शाम 7 बजे डोर्स ओपन
4: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02284260678
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
6: फ्रॉम साउथ ऑफ ब्रॉडवे टू द London Tube, UK. The big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
7: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 02087672142.
1: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Anisa Nasir with The Big Show, weeknights from 7 p.m.

तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दो, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। तुम मेरे संग चलो या ना चलो, मैं तो आवाज लगाऊंगा चला जाऊंगा। और दर्शन जी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया गुजरात से आवाज लगाने के लिए बेहद शुक्रिया, सो लवली टू हैव यू ऑन बोर्ड। और फरमाइशी सिलसिला ट्यूसडे टिल थर्सडे चलता है, तो कल फरमाइश जरूर भिजवाइएगा, हमें आपकी फरमाइश प्ले करके बहुत खुशी होगी। फिलहाल तो नहीं सज जाएगी, ना घर नहीं जा रही, खबरों की तरफ चले आप भी मेरे साथ, खबरें सुन के वापस आते हैं, बल्कि जाना कहाँ है, यहीं बैठे बैठे सुनते हैं। बूझने वालों का शुक्रिया भाई, बेप्सी राय जी, इट्स सो लवली टू हैव यू इन यूके, आ जाओ किसी दिन फिर, क्या ख्याल है?

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: अपनों के दरमियान पराया रहूंगा क्या? अपनों के दरमियान पराया रहूंगा क्या? इतने बड़े हुजूम में तन्हा रहूंगा क्या? ऐसे तो हर किसी में खराबी है कुछ ना कुछ, अब मैं तमाम शहर से रूठा रहूंगा क्या? माना किसी वजह से जरा ठेस लग गई, शीशा गराने शहर मैं टूटा रहूंगा क्या? आंखों से गिर के खाक में मिलना था और क्या, तुझको लगा मैं गाल पे ठहरा रहूंगा क्या? तूने नजर बदल के रवैया बदल लिया, मैं तेरे साथ वैसे का वैसा रहूंगा क्या? अपनों के दरमियान पराया रहूंगा क्या? इतने बड़े हुजूम में तन्हा रहूंगा क्या? दर्शन जी, आपके नाम।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Saath hi na koi manzil, bheegti shab hawa ki san san hai, hu ka alam hai, ek dhadkan hai. मुझको तन्हाई रास आती है, आसमां से जो मेरी अनबन है, जो मुझे भूलने नहीं देता, एक साथी है, एक बचपन है. खाली घर में तलाश करता हूँ, तेरी आवाज है या छन छन है. क्या प्यारी पसंद है. और ये पसंद थी हमारे बहुत प्यारे लिसनर जनाब डीजे की, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, गुजरात में सुन रहे हैं. और आज उनकी फरमाइश पूरी करने के पीछे वजह ये है कि वो काम की वजह से कभी सुन पाते हैं, कभी नहीं सुन पाते. तो इस वक्त उन्होंने कहा मैं सुन रहा हूँ, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी इफ़ यू कैन प्ले मी दिस सॉन्ग, वाई नॉट. और आपने रसीद भी भिजवा दी. आई लाइक दैट वेरी मच.
0: लाइका गोल्ड.
2: और लीजिए एक खबर आप तक पहुंचाते हैं. हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते रहते हैं. लखविंदर वडाली जी एक बहुत जाना माना नाम सिंगिंग की दुनिया का, लाइव इन कॉन्सर्ट, पंजाबी लेजेंड है वो. फ्राइडे 16th अक्टूबर एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाउ एंड संडे 18th अक्टूबर एट ICC बर्मिंगम में परफॉर्म करेंगे. टिकट्स का बंदोबस्त कर लीजिए.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of yeah, yeah, wo. Only Like a Gold.
2: एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, सुनवाते हैं. आप सुन रहे हैं Like a Gold को, और मैं हूँ, yes, Anisa Nasir.

0: is Anissa Nasir with The Big Show.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: तेरा क्या होगा रे कालिया?
4: सरदार मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं.
3: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा. क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो.
5: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली.
6: पूनम स्वीट सेंटर 86 वेस्टर्न रोड साउथ हॉल. कॉल 0208574-4934. डिलीवरी भी अवेलेबल है Uber Eats पर.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
9: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
8: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
9: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
8: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
10: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
11: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Leica.

0: और ऐसी गीतों पर फिदा है हमारे सुनने वाले। हमारी रेट्रो का यही तो कमाल है, अपना बनाता है और ऐसे बनाता है कि फिर आप हमसे दूर रह नहीं पाते हैं, और हमें यही चाहिए। कहते हैं महबूब, वो उसका कोई भी रूप हो, रेडियो हो, म्यूज़िक हो, शायरी हो, बातें हो, महबूब बड़ा पुरसकून होता है। महबूब चीज़ को पाकर या महबूब के पास जाकर सुकून मिलता है। एक दो घड़ी की मुलाकात में भी अगर वो आपकी थकन ना उतार दे, तो या तो आप मुहिब नहीं या वो महबूब नहीं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 367.2 Pakistani rupees, 85.2 Afghani, 127.1 Indian rupees, 163.09 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £99.89 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: From Lollywood, with love. With Anissa.

0: वन एंड ओनली मुजीब आलम जी, शमा और परवाना था फिल्म का नाम। मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है, मेरे जाने के बाद लाइका गोल्ड को सुनते रहिएगा। गोल्ड नाइट का चुना हुआ म्यूजिक खास तौर पर आप ही के लिए तैयार किया जाता है, और ब्रेकफास्ट में हमारे नेटवर्क शोज़ जो हैं वो चलते रहेंगे, और यहाँ लंदन में, ग्रेटर लंदन में हाजिर हो जाएंगी हमारी काजल जी आपके लिए ब्रेकफास्ट शो लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल वी मीट अगेन, शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: Anisa Nasir with The Big Show, weeknights from 7 PM. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, every day at 9 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there.
1: Southall Travel, at all protected.
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु,
5: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
6: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
3: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
1: टू बुक कॉल 0208 514 5400. Book online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
8: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी, और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
9: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
8: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में।
9: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
8: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 0794756147.
9: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208907016.
8: दिवाली का जश्न अपनों के संग।
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं? तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
9: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
12: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: This is Like a Gold.
1: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
3: डेजर्ट सफारी,
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected. Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
5: Leica Gold par har raat ki yahi reel. Purane magar sada bahar geet.